0: नमस्ते वनकम सस्याकाल, हमें सुन रहे आप सभी को हैप्पी डे। स्वागत है आप सबका एमओपी कम्युनिटी रेडियो 107.8। आज का हमारा विषय है मोबाइल का जमाना है।
1: सीन वन, सुबह कमरे में।
2: राहुल उठो बेटा, कितनी देर सोएगा?
0: क्या माँ, थोड़ी देर तो सोने दो।
2: थोड़ी देर? सुबह के 9 बजे और तू थोड़ी देर कहता है?
0: 4 बजे तो सोया माँ मैं, और तुम 9 बजे उठा रही हो।
2: वाह, मेरा बेटा तो पढ़ाई कर रहा था।
0: नहीं माँ, फोन पे बात करते करते इतनी देर।
2: उठ जा।
0: ठीक है ठीक है, गुस्सा मत करो।
1: उठकर फिर से मोबाइल यूज करने लगता है।

0: होते हुए भी फोन पे रहता है, फिर नाश्ते के लिए हॉल में आता है।
1: नाश्ता और कॉफी टेबल पर रखा है, ले लो।
2: हाँ ठीक है।
0: शक्कर की जगह नमक डालते हुए कॉफी पीने लगता है।
2: छी!
1: फोन को छोड़ेगा तो दूसरी चीज दिखेगी ना।
2: अब छोड़ो, मैं निकलता हूँ कॉलेज के लिए।
0: हेडफोन डालते हुए गाड़ी चलाता है। सीन टू, कॉलेज में। क्लास में भी फोन नहीं रखता, प्रोफेसर आ जाता है और मजबूरन उसे फोन रखना पड़ता है।
2: देख आ गया ये सर खाने।
0: मन में,
2: सलोनी ने क्या रिप्लाई किया होगा, मानी होगी क्या वो डेट के लिए?
0: अचानक सर राहुल को सवाल करते हुए,
2: क्या मान गई वो?
0: तू क्यों इतना हंस रही है, तेरा भी हाल वैसा ही तो है।
2: और तू कम है, तू भी तो पूरा दिन मोबाइल पे रहती है।
0: वैसे देखा जाए तो आजकल तो सभी इस मोबाइल के गुलाम हैं, जिसे देखो वो मोबाइल पे रहते हैं।
2: हाँ, दो दिन पहले मैं अपने एक चाचू के घर गई थी, उनकी लड़की रिया सिर्फ 2 साल की है, वो पूरा टाइम मोबाइल पे गेम्स खेलती रहती है, उसे मोबाइल ऑन करना लगाना ऑफ करना सब आता है, मैं तो हैरान रह गई।
0: और अपन डॉक्टर या लूडो कैरम खेलते थे।
2: ये आजकल के बच्चों को खाना खिलाने के लिए भी मोबाइल चाहिए, उसमें राइम्स या फिर कार्टून या गेम्स खेलते खेलते ही खाना खाते हैं।
0: बच्चे ही नहीं बड़े भी इस मोबाइल का शिकार है, एक ही घर में एक दूसरे को बुलाने के लिए भी फोन का इस्तेमाल करते हैं।
2: हाँ, लोगों के पास खाना हो या ना, पैसे हो या ना, पहनने के लिए कपड़े हो या ना, लेकिन मोबाइल तो जरूर होता है। पहले कहते थे रोटी कपड़ा मकान जरूरी था, पर आज तो मोबाइल का होना जरूरी हो गया है।
0: क्या तुझे मालूम है दुनिया में जितने वॉशरूम है उससे ज्यादा लोगों के पास फोन है?
2: क्या सच्ची?
0: बिल्कुल सच। और ऐसे ही चलता रहा तो सोचो इन सब वेस्ट मोबाइल का कहाँ रखेंगे और इसका असर कितना होगा हमारी धरती पर।
2: हाँ, मोबाइल का वेस्ट तो बायोडिग्रेडेबल भी नहीं है, और कितना प्लास्टिक यूज होता है, ये तो एक डर है अपनी धरती को।
0: चलो अब लोगों से जानते हैं उनका इस पर और फोन एडिक्शन पर क्या विचार है।
3: Yes, I too believe in the fact that mobile phones are more than washrooms. It really creates a negative impact on personal contact, especially teenagers at dining table, completely disinterested in the family time. They usually not giving time to family because they're really like busy in the social network or even messaging with someone else. They really don't have any time to family. At school also, and some people used to use mobile at while crossing the roads and or driving vehicles, and the radiation which caused by this mobile network, it really affect the human health. The more addiction to the mobile, some people are really addicted to the phone, it really cause eye scan, cancer, DNA damage, cardiac problem. Nowadays, the mobile phones have dehumanized the dynamic human contact. Some people don't know how to interact in real life anymore.
4: मैं भी मानती हूँ कि शौचालय कम है मोबाइल फोन के मुकाबले में। आजकल मोबाइल फोन का इतना चलन है कि बच्चे परिवार को भी समय नहीं देते हैं, यहाँ तक कि बच्चे पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं देते हैं, यहाँ तक कि गेम इतना महत्व हो गया कि बाकी सब पीछे छूट गए हैं। सिर्फ बच्चे ही मोबाइल के शिकार नहीं हुए बल्कि बड़े भी मोबाइल के बगैर नहीं रह पाते, जिसमें आदमी औरत बड़े बुजुर्ग यहाँ तक कि घर के नौकर भी मोबाइल के शिकार है। उससे बच्चों की पढ़ाई खाना पीना और घर का ध्यान नहीं रख पाते, जिसकी वजह से नन्हे मुन्ने बच्चे भी मोबाइल के आकर्षित हो जाते हैं, जिसकी वजह बहुत सी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, जैसे कि कैंसर, भूलने की बीमारी और आंखों की रोशनी पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। मगर ये सब छोटी बीमारी है, इससे बड़ी बीमारियां भी आती है। कुछ चीज़ों पर मोबाइल जरूरी है, जैसे कि जानकारी प्राप्त करने के लिए, कुछ नया सीखना हो तो, हर रोज़ की ताज़ा खबर की जानकारी प्राप्त करनी हो तो मोबाइल काफ़ी लाभदायक है। मगर मोबाइल उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितना ज़रूरत हो, वरना अपने मोबाइल की हानिकारक

0: आवश्यक है, पर उसे खुद पर हावी न होने दे। याद रहे, मोबाइल को इंसान ने बनाया है और हमें उसका गुलाम नहीं बनना है। मैं सोनाली,
1: अनुषा,
2: कोमल, आप सब से अलविदा लेते हैं और आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसे ही कुछ मजेदार और आवश्यक विषय पर। तब तक के लिए अलविदा।

0: नमस्ते, आज हमारा टॉपिक है बचपन। यू आर लिसनिंग टू एमओपी कम्युनिटी रेडियो 107.8, आर रेडियो, आर कम्युनिटी, आर प्राइड।
1: नमस्ते, मेरा नाम खुशाली है और आज मैं आपको एक कविता सुनाने वाली हूँ। हम बच्चे ही अच्छे थे, हम बच्चे ही अच्छे थे, खामखा बड़े हो गए, इन बड़े बड़ों की दुनिया में आखिरकार हम भी शामिल हो गए। हम बच्चे ही अच्छे थे, खामखा बड़े हो गए, ना कोई फिक्र थी ना थी कोई जिम्मेदारी, सिर्फ पढ़ाई और खेल कूद तक ही सीमित थी हमारी दुनिया सारी। पापा की फटकार थी पर वो भी झूठी वाली, बीच में माँ का प्यार और सिर्फ मेरी तरफदारी। सोचती हूँ ना समझ ही अच्छी थी, क्यों मैं समझदार हो गई, इन समझ वालों की भीड़ में हम बेशुमार हो गए। हम बच्चे ही अच्छे थे, खामखा बड़े हो गए, पल भर का साथी दोस्त बन जाता था, बिछड़े हुए वक्त आंखों में आंसू ले आता था। हम मासूम ही अच्छे थे, क्यों मतलबी हो गए, हम बच्चे ही अच्छे थे, खामखा बड़े हो गए। ना जेब में वॉलेट था ना था कोई मोबाइल, फिर भी चेहरे पर रहती थी एक सुकून भरी स्माइल। हम बच्चे ही अच्छे थे, खामखा बड़े हो गए, रहते थे हमेशा टेंशन फ्री, छोटी छोटी जीतों पर जश्न मनाते थे, अपने ही बचपन पर क्यों हावी हो गए। हम बच्चे ही अच्छे थे, खामखा बड़े हो गए, बस इसी कुछ करने की आपाथापी में हमारे इमोशंस फेक हो गए। हम बच्चे ही अच्छे थे, खामखा बड़े हो गए, खामखा बड़े हो गए।
0: अगली आ रही है उन्नति, जो आपको बचपन की वादियों में लेके जाएगी शायरियों के साथ।
2: बचपन का जमाना होता था, खुशियों का खजाना होता था, चाहत चांद को पाने की, दिल तितली का दीवाना होता था, रोने की वजह ना होती थी, हंसने का बहाना होता था, खबर ना थी कुछ सुबह की, ना शामों का ठिकाना होता था, दादी की कहानी होती थी, परियों का फसाना होता था, गम की

0: जुलन न होती थी न जख्मों का परिणामा होता था। बारिश में कागज की कश्ती मौसम सुहाना होता था, वो खेल वो साथी होते थे, हर रिश्ता निभाना होता था।
1: वाह वाह क्या खूब।
0: झूठ बोलते थे कितना फिर भी सच्चे थे हम, झूठ बोलते थे कितना फिर भी सच्चे थे हम, ये उन दिनों की बात है जब बच्चे थे हम, जब बच्चे थे हम।
1: वाह वाह क्या खूब।
0: याद आता है वो बचपन जब खुशियों कितनी छोटी थी, बाग में तितली को पकड़ हंसना, तारे तोड़ने जितना खुश होते थे, पानी में खुद को भी भिगोकर हंसते थे।
1: सही कहा, बचपन ऐसा हमारा जीवन का अंग था जिसमें हमने बहुत एंजॉय किया। उन्नति ने जो अभी कहा बहुत ही अच्छा कहा, अति उत्तम। अब अगली पेशकश कविता है जो महक हमारे लिए प्रस्तुत करेगी।
2: बचपन, बचपन था 100% रियल एक्सपीरियंस, 100% रियल एक्सपीरियंस आज भी जीना चाहते हैं हम सब, मगर वो बचपन के दिनों का मज़ा ही कहाँ है अब। बचपन की बातें आज भी जब याद आती है, खुशियों की सौगात घर ले आती है। उन दिनों बस खिलौने ही थे जो टूटा करते थे, क्योंकि भाई बहनों से भी हम बड़े प्यार से लड़ा करते थे। रूठते भी थे तो तुरंत मान भी जाते थे, आंसू भी चेहरे पर आने से पहले ही थम जाते थे। मेलोडी पॉपिंस और लॉलीपॉप से था हमें प्यार, छुपा के रखते थे जेब में न जाने कितने किस्मी बार। बारिश में भीगना, नाचना, गाना और बीमार पड़ने पर डांट खाना, चाचा चौधरी से थी हमारी यारी। सोच सोच के आंखें हो जाती है नम, हाँ 100% रियल एक्सपीरियंस आज भी जीना चाहते हैं हम, पर वो बचपन का मजा ही कहाँ है अब।
1: चलो अब बचपन पर एक गाना हो जाए, बचपन कहाँ।

आज बचपन को याद करके हमें हमारा बचपन याद आ गया। मैं अंजलि, महक, उन्नति और खुशहाली आज आपके सामने हमारा सबसे फेवरेट बचपन का गाना प्रस्तुत कर रहे हैं।

0: थके दौड़ा।
1: हम चाहे उम्र के जिस भी पड़ाव में हो, जिस भी मुकाम पर हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिल के अंदर बचपन की यादें छिपी होती है। जब बचपन था तो जवानी एक ड्रीम था, जब जवान हुए तो बचपन एक ड्रीम है। जब घर में रहते थे आज़ादी अच्छी लगती थी, आज आज़ाद है फिर भी घर जाने की जल्दी रहती है। कभी होटल में जाना पिज़्ज़ा बर्गर खाना पसंद था, आज घर पर आना और माँ के हाथ का खाना पसंद है। स्कूल में जिनके साथ झगड़ते थे आज उनको ही इंटरनेट पे तलाशते हैं। खुशी किसमें होती है ये अब पता चला है, बचपन क्या था इसका एहसास अब हुआ। काश बदल सकते हम जिंदगी के कुछ साल, काश जी सकते हम जिंदगी फिर एक बार। जब हम अपने शर्ट में हाथ छुपाते थे और लोगों से कहते फिरते थे, देखो मैंने अपने दोनों हाथ जादू से गायब कर दिए। जब हमारे पास चार रंगों से लिखने वाली एक पेन हुआ करती थी और हम सभी के बटन को एक साथ दबाते की कोशिश करते। जब हम दरवाजे के पीछे छुपते थे ताकि अगर कोई आए तो उसे डरा सके। जब आंख बंद कर सोने का नाटक करते थे ताकि कोई हमें गोद में उठाकर बिस्तर पे पहुंचा दे। सोचा करते थे कि यह चांद हमारी साइकिल के पीछे पीछे क्यों चल रहा है। ऑन ऑफ वाले स्विच के बीच में अटकाने की कोशिश किया करते थे। फल के बीज को इस डर से नहीं खाते थे कहीं हमारे पेट में पेड़ ना उग जाए। बर्थडे सिर्फ इसलिए मनाते थे ताकि ढेर सारे गिफ्ट मिले। फ्रिज को धीरे से बंद करके ये जानने की कोशिश करते थे कि इसकी लाइट कब बंद होती थी। बचपन में सोचते थे कि हम बड़े क्यों नहीं हो रहे और अब सोचते हैं बड़े क्यों हो गए। ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन। हम उम्मीद करते हैं कि हमने भी आज आपको अपने बचपन के बारे में कुछ बातें जरूर याद दिलाई होगी। मैं यह कहकर आपसे विदा लेती हूँ, अपने बचपन को सबने खूब एंजॉय किया। धन्यवाद। यू आर लिसनिंग टू MOP कम्युनिटी रेडियो 107.8, आर रेडियो आर कम्युनिटी आर प्राइड। थैंक यू।